0: अग्निमिंधान उभौ लोकौ सने महम्
1: उभयोर्लोकयोर् उद्धाति मृत्युम् तरान्यहम्
0: आच्छिदो मृत्यो मावधीर्मामे बलम् विवृहो मा प्रमोषी
1: मामेरेश आयुरुग्रन् चक्षसं त्वा हविषा विधेम
0: मानो महान्तमुत मानो अर्भगम् मान उक्षन्तमुत मान उक्षितम्
1: मानो वधे

0: जी इस मोहनम भोपाली इस विभास. सो इट्स अ ब्यूटिफुल कॉन्ट्रास्ट अमंग द जस्ट वन नोट विच इज री री शुद्री एंड रे सा विच मेक्स इट मोर मेडिटेटिव. इट एड्स अ फ्लेवर ऑफ मोर डेप्थ इन द नोट एंड वेरी मेस्मराइजिंग रागा. एब्सोल्युटली
1: आई मीन द कोमल रे हैज इट्स ओन पावर एंड especially in the mornings, as you mentioned.
0: Yeah, it's a morning raga.
1: Yeah, it's so much it lends itself to contemplation.
0: Yeah. Just by singing the notes, like

हरि भजन बिना सुख शांति नहीं। हरि भजन बिना सुख शांति नहीं। हरि भजन बिना सुख शांति नहीं। हरि भजन बिना सुख